0: वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारे रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं।
1: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस सूरत में तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को न अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार। अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम, ये इसलिए कि तुमसे बुख़ल करते हैं। फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज तेज जवानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुख़ल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही न थे तो अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: कालम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-400 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बहितरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश

0: भरोसे का।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
0: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: माँ खादो गरम करे थी वठा।
3: थकल थकल पे लगे घणी खरेता
2: तवा जो पुट सुमई न थो पूरी रात मां तक खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
4: मेरी थकन को भी तेरे
3: तू फल वे मां चा तू

0: हे वट एड़ियूं शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मां कंहिं खाईंदमि
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन ग़िज़ा भाउ ऐं ॿार ॿिन्ही जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश
4: ख़ुशख़बरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN.
3: I don't like the first sentence. I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. They're fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it.
4: 20 years is not enough for you, it's got to be a
3: problem. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a
4: big deal. It means you've got to get all the fuel out and no more production.
3: You have to get everything, but we're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a terrible ship, so it's going on.
4: I'm talking about because they would not remove the...
3: They said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it. Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective, that's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister.
5: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां जंगबंदी वारो फ़ैसिलो पाकिस्तान जे चवण ते हिकु फेवर तौर कयो। ईरानी तजवीज़ूं मुकमल तौर ते क़बूलण जोगियूं न आहिनि। वीहनि सालनि ताईं एटमी प्रोग्राम बहतर करण वारी तजवीज़ सुठी आहे। यूरेनियम जे रचाव बाबति लेवल जी ज़मानत तसली जोगी न आहे। आबनाए हुरमज़ बाबति कंहिंजी मदद ज़रूरत न आहे। नई चीनी सरकार खे कंहिं मदद बाबति चयो आहे। कुझु ॾींहनि में ईरान खां तेल वठंदड़ चीनी कंपनियुनि तां पाबंदी हटाइण जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। ताइवान बाबति अमरीकी पॉलिसी तब्दील न आहे थी। ताइवान खे हथियार ॾियण जी मंज़ूरी नाहे ॾिनी। थी सघे थो त मंज़ूरी ॾियां या न, पर चीन सां तारीख़ी वापारी मुआहिदा थिया आहिनि जंहिंजो अमरीका खे फ़ाइदो थींदो। पाकिस्तान जे टाकरे में अमरीका सां ॻाल्हियूं नाकाम न आहिनि थियूं। मुश्किल मरहले मां गुज़री रहियो आहिनि। जंग जी शुरूआति बि ईरान ई न कई हुई, रुगो पंहिंजो दिफ़ा कयो। जंग बंदी बरकरार रखण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। आबनाए हुरमज़ में रिनकनि जी ज़िमेवार बि ईरान न आहे। नई दिल्लीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परॾेही वज़ीर बासिर अख़्ती चयो त असां वटि अमरीका ते तबाह करण जो बि को जवाज़ु न आहे। मुआहिदे खां पहिरियां सभु शयूं वाज़े थियणु घुर्जनि। चीन असांजो स्ट्रेटेजिक भाईवार आहे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि में यूरेनियम जो रचाव 1.5 लाख जो शिकार आहे। आबनाए हुरमज़ अमरीकी जहाज जे मुकमल ख़ात्मे बाद ई खुली सघंदो। आबनाए हुरमज़ हिन वक़्त बि जंग में मुलस मलिन खां सवाइ ॿियनि लाइ खुलियल आहे। ताक़त जो इस्तेमाल नतीजा न ॾींदो। ईरान जे एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि तकरारनि जो हल मुशावरत सां निकरणु घुर्जे। मसइले जे हल तकिड़ो हल अमरीका, ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मफ़ाद में आहे। जे डी परॾेही वज़ारत चयो आहे त तकरार जे निबेरे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं राब्तनि वारो सिलसिलो जल्द बहाल थियणु घुर्जे। ईरान जंग शुरू ई न थियणु घुर्जे। हा, जेका जंग जो ज़ाहिर आहे कंहिंजे मफ़ाद में न हूंदो। चीन सदाई ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी खे ई हथी ॾिनी आहे। दिलरानी मज़म्मत ईरान खे अमरीका जो मुक़ाबिलो करण लाइ वधीक मज़बूत कयो। अमरीकी ऐं इसराइली हमलनि दौरान जदोजहद में समूरी क़ौम मुतहद हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़्तबा ख़मेनेई जो बयान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हारमी चयो आहे त रत जे आख़िरी फुड़े ताईं ईरान सलामती ऐं आज़ादी जो दिफ़ा कयो वेंदो। ईरान वटि जदीद ज़मीनी ऐं फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मौजूदु आहे। जंग में फतह ईरान जी थींदी।

0: पाकिस्तान में दुनिया अकेलो ही करण की कोशिश में भारत पाण अकेलो थी रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राज अगोणे सरबराह जो एतराफ़। आईएस दिलत है बरतानवी अशरियाती इदारे के इंटरव्यू दे पाकिस्तान के तनाई में धिकण की कहानी पुरानी थी चुकी। पाकिस्तान कदे न टुटंदो। पाकिस्तान हाने ईरान अमेरिका जंग में टाकड़े कर रो है। वो किरदार भारत के अदा करण घुर्जे। हा पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली लात। पेट्रोल ऐं डीज़ल फी लीटर 5-5 रुपया सस्तो। क़ीमतुनि में लात बाद पेट्रोल जी नई क़ीमत 409.78 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 409.58 रुपया फी लीटर मुक़रर। नोटिफिकेशन जारी।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: सिंध डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर रफीक अहमद, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA इस्लामाबाद। असां वटि बगैर तकलीफ़ जे दंद कढिया ऐं नवां दंद लॻाया वेंदा आहिनि। हर कम जदीद टेक्नोलॉजीअ सां कयो वेंदो आहे। जरासीम खां पाक औज़ार। वक़्तु सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं। पतो नज़्द गुल होटल हालाणी। राब्ते जे लाइ 0301-63-0888। खुशखबरी। हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8-5-6-9।
3: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद अइंबा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: conspire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister.
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयट ईरान से जंगबंदी वो फैसलो पाकिस्तान चवण के एक फेवर तौर ईरानी पर ईरानी तजवीज मुकम्मल तौर से कबूलन जो नाहन वी साल एटमी प्रोग्राम मुअतल करने वाली तजवीज सुठी है यूरेनियम के रचाव बाबत लेवल की जमानत तसली जोगी ना।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN.
3: पाकिस्तान के दुनिया में अखिलो करण की कोशिश में भारत पान अकेलो थी रो है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राज अगुणे सरबराह जो एतराफ एस दलत है त बरतानवी रशादीदार के इंटरव्यू डींदे पाकिस्तान के तन्हाई में धिकण की कहानी पुरानी थी चुकी। पाकिस्तान कदें न टुटद। पाकिस्तान हाने ईरान अमेरिका जंग में टाकलो कर रो है। यो किरदार

0: like the first sentence, I'd just throw it away.
1: What was the first sentence?
0: An unacceptable sentence. Because they have fully agreed no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it.
1: 20 years is not enough for you. It's got to be a perfect...
0: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a...
2: शादी दारे खेन चुबड़ी ने चोद पाकिस्तान के तनहाई में धिकरण की कहानी पुरानी थी चुकी पाकिस्तान कदे न टुटदो पाकिस्तान हाने ईरान अमेरिका जंग में टाकनो कर रहे वा है यो किरदार भारत
0: नॉट रिमूव द दे सेड दैट दे कैन रिमूव इट बिकॉज़ दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी सीज फायर आई गेस यू कॉल वी हैव अ ब्लॉकेड दैट्स सो इफेक्टिव दैट्स व्हाई वी डिड द सीज फायर वी रियली डिड द सीज फायर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर नेशंस आई वुडन्ट हैव रियली बीन इन फेवर ऑफ इट बट वी डिड इट as a favor to Pakistan, the terrific people, the field marshal, the prime minister.
2: अमरीकी सदर ट्रंप चयो त ईरान सां जंगबंदी वारो फैसलो पाकिस्तान जे चवण ते हिकु फेवर तौर कयो ईरानी तजवीज़ूं मुकमल तौर ते क़बूलण जोगियूं न आहिनि वीहनि सालनि ताईं एटमी प्रोग्राम मुअतल करण वारी तजवीज़ सुठी आहे यूरेनियम जे रचाव बाबति लेवल जी ज़मानत असली जोगी न आहे आपने हुरमत बाबति कंहिं जी मदद जी ज़रूरत न आहे नई चीनी सदर खे कंहिं मदद बाबति चयो आहे कुझु ॾींहनि में ईरान खां तेल वठंदड़ चीनी कंपनियुनि तां पाबंदी हटाइण जो फ़ैसिलो कयो वेंदो ताइवान बाबति अमरीकी पॉलिसी तब्दील न आहे थी ताइवान खे हथियार ॾियण जी मंज़ूरी न आहे ॾिनी थी सघे थो त मंज़ूरी ॾियां या न पढ़ियां चीन सां तारीख़ी वापारी मुआहिदा थिया आहिनि जंहिंजो अमरीका खे फ़ाइदो थींदो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8559।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असा वट जगह जो डारियो, जगह जा पावा आई पाइप, डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम, 0301-54-4456, आई तौकीर अहमद, 0306-1623-793।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राबते जे लाइ 03200180003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
9: 03013992836।
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 12:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अपना शहर अपना घर महराबपुर और महराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-385-569-0300-338-5569।
1: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छ नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0302-01-8003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
3: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल।

दर्शन आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो. आपके सिद्रा यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद है. यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं जनाब वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो हमेशा बढ़ती रहे, तो आपने वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करना है. तो आप लोगों को बताएंगे ये तफसील के साथ साथ. लेकिन यहाँ पर ऐसा करते हैं कि आप लोगों को आज के प्रोग्राम की टॉपिक की जानिब ले जाते हैं, उसके बाद जो आप लोगों को बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनेगा. तो यहाँ पर आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक आप लोगों से पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग जो है ना वो कुछ लोग तो स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं. तो ऐसा होता है कई मरतबा आप अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से फंस भी जाते हैं. बहुत जगहों पर ऐसा सीन हो जाता है, आप फिर ये बोलते हैं कि भाई काश मुझे ये नहीं करना चाहिए था. तो आज आप मुझे ये बताने वाले हैं क्या आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में कहीं पर फंस गए हैं, और फंसे हैं तो कैसे बाहर निकले उस सिचुएशन से. बिल्कुल जी, ये आज आप मुझे बताएंगे. ये बहुत सारी ऐसी बातें होती जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, और साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं शो के अंदर, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर हमारी पोस्ट आपको मिलती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है. जल्दी जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मैंशन कीजिए और उनको भी बताइए कि वो भी खूबसूरत बन सकते हैं भाई जान. तो आप भी खूबसूरत बनिए, खूबसूरती की दुनिया में आपको वेलकम एंड खुश आमदीद. और साथ ही साथ आज आप मुझे बता रहे हैं कि आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में फंस गए हैं, और फंसे हैं तो फिर बताएं सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है आज. आप टॉपिक के ऊपर बात कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी. और ये तो हर किसी ने ट्राई किया होगा, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो हर कोई कर रहा होता है. ओके जी, इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं. बिल्कुल जी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि भाई आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को बताने के लिए प्रोडक्ट्स है जनाब, जिनमें व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एश का फेस वॉश मिल रहा है, जो कि विटामिन सी वाला फेस वॉश है. और उसके साथ साथ अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एश का. और अगर आप जो हैं वो साबुन लगाने वाले लोग हैं, साबुन लगाते हैं, तो भाई व्हाइट एश का सो भी मौजूद है, सो भी आप ट्राई कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप गर्मियों में कोई लाइट वेटेड फार्मूला चाहते हैं, लाइट वेटेड क्रीम चाहते हैं, जो कि भाई आप लोगों को मेकअप से भी बचाए और आपकी खूबसूरती को भी बहाल रखे, तो उसके लिए व्हाइट एश की लवली क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है. और व्हाइट एश की लवली क्रीम के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है ना व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है, और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल का एक्नी क्लियर ट्यूब भी मिल रहा है. और डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ये क्रीम जो है, एंटी एक्नी क्रीम आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार होता है उन लोगों के लिए, खास वो लोग जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आते हैं, एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं, तो भाई आपने डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब इस्तेमाल करना है जो कि व्हाइट एश वालों का है, ठीक है जी. और इसी के साथ साथ लोशन भी मौजूद है इनका, और हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है. बहुत सारे मजे के प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरती को बढ़ाते हैं और हमेशा खूबसूरत रहते हैं. और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपकी सिटी में मिलनी चाहिए जाहिर सी बात है, तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595. बिल्कुल जी, 03-15-799-0595 ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए ये तमाम प्रोडक्ट. ओके जी, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, आप काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर बहुत ज्यादा कर दिया करें, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी जल्दी से. और इसके अलावा अनवर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं उस्ताद बुखारी की शायरी, उम्मीदों आसरा पलिया को न होंदई, करे याद घोड़ा झलिया को न होंदई, जमानो घणोई रुलियो तू भी होंदे, असा जिड़ा माणो मिलिया को न होंदई. वाह वाह, वेरी नाइस. और आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, वक्त वालों को तो मयसर हो, हम कम वक्त अब किधर जाएं, बस आप यहीं बैठे रहिए हमारी पोस्ट पर. यूनिस खोड़ो हमें सुन रहे हैं, यूनिस खोड़ो वालेकुम अस्सलाम, आप हमें दौलत गोट से सुन रहे हैं, वेलकम जी. अहमद आलार हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम. इमरान अली उज्जैन भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी.
अनवर भाई बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगाएंगे, लेकिन ये बात है कि मुझे जरा सिंगर का नाम जो है ना वो मेंशन कीजिए, मुझे नहीं पता ये गाना मैं सर्च करूंगी तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और नूरिसन तुनियो भाई भी हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम लाड़काना। अदि सिद्रा गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं दे दी है मुझे। और उसके अलावा है जी मोहम्मद जमान, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, सो आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। किशोर भाई कहते टॉपिक हम बचपन से स्मार्ट हैं तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम आप बचपन से करते हो उसमें कभी धोखा नहीं खाते। ये तो है वैसे। हाँ वैसे आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। चलें, लेकिन आज बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं ना जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो सारे लोग मुझे ये बताएंगे कि जब कभी आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और आप कहीं पर फंस गए अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से, तो वहां से आप कैसे बाहर निकले, ये आज आप मेरे साथ एक्सपीरियंस जरा अपना शेयर कीजिए। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर दी जा रहे हैं। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइए और लगाते जाइए जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क। सुनते रहिए प्रोग्राम वाइट।

0: इट्स 1:30 PM दिस टाइम
1: चेक। खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: भरोसे का
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान।

ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जनाब, सो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों को बताए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद आप जानना चाहते हैं, या फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और आप नहीं जानते हैं. तो बिल्कुल, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को इजीली मिल जाते हैं. और जनाब, अगर आपको व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इजीली मिल रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों की खूबसूरती को कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरह आप लोगों के चेहरे की हिफाजत करते हैं. तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की बात की जाए तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो की एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है, नेचुरल अजा से तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है जनाब. इसके अंदर मिल्क भी मौजूद है और जनाब बादाम भी मौजूद है. ये सारी चीजें मिलकर आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मियों का सीजन है भाई, क्रीमें कैसे लगाई जा सकती है, तो गर्मियों के सीजन में भी आप लगा सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा ये चीज है, थोड़ी सी इस चीज को ना आपने नजरअंदाज नहीं करना कि जब आप क्रीम लगाएं ना, ब्यूटी क्रीम लगाएं, तो उसको रात के टाइम ही लगाया करें. नाइट क्रीम है तो आप नाइट के टाइम ही लगाया करें. उसके अलावा जो है ना, अपना फेस अच्छे से क्लीन रखा करें. फेस का जो है ना, ऐसा होता है कि अक्सर लोग हमने देखे हैं जो कि अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते हैं ठीक तरह से. उन्हें पता नहीं होता कि भाई क्या टाइमिंग है फेस वॉश करने की, क्या टाइमिंग है और कितनी मरतबा आपने फेस वॉश करना होता है. तो वो बस लगा रहे होते हैं, सोप का यूज कर रहे होते हैं, फेस वॉश का यूज कर रहे होते हैं, ना पता कि किस तरह और क्यों लगाना है. तो उन लोगों की स्किन अगर देखा जाए ना, तो वो खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ओके शोके रहे, ग्लो करते रहे, फेयर रहे और आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो फ्रेश भी रहे, तो आपने व्हाइट एश का जो है ना वो फेस वॉश भी इनके पास अवेलेबल है और सोप भी अवेलेबल है. अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो भाई फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे. व्हाइट एश का फेस वॉश है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, आपके चेहरे की स्किन को ग्लोइंग करता है और साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो है ना एक अच्छा और फ्रेश सा लुक भी देता है. इसके अलावा व्हाइट एश का साबुन भी मौजूद है, सोप भी आए बाबा. अगर तुम्हें साबुन लगाना था, तुम्हें साबुन लगा सको था व्हाइट एश जो एलोवेरा एवोकाडो से तैयार थियल है, तो तुम्हारी खूबसूरती जगह वो हमेशा बरकरार रहने वाली है. तुम्हारी स्किन फ्रेश रहती, फेयर रहती, प्रोटेक्ट होती जनाब हर साइड इफेक्ट का. तो तुम्हें बसानी इस्तेमाल कर सको था, कितना भी बनी बसानी वी सको था. अगर तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना है तो तुम्हारे लिए नंबर आए जनाब, जो तुम डायल करी पाँच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था. नंबर आए 03-15-799-0595. उनके सखर में बुधन पा दिलशाद जनरल स्टोर आए गरीबाबाद में, तुम सखर वारा जी मानो दिलशाद जनरल स्टोर तमी वी सको था. मजेदार गाल से कि अक्सर मानू मुखा पुछन पया अज भी मु मैसेज डिठा बैठ रहे ये

मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई। वीरू मल मेंघवार हमारे साथ है, कहते वीवीआईपी शो मीरपुर खास से सुन रहा हूँ। थैंक यू जी वीरू मल भाई, आपको वेलकम करते हैं। सलीम रजा बिरोही हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ साथ जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। गुलाम कादर भट्टी वालेकुम अस्सलाम, कहते जी आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है। फ्राम मटियारी से प्लीज सॉन्ग आप कितने हसी हैं, चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना हम लगाएंगे, ठीक है। और नूरिस एंटोनियो भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं शो, अच्छा कहते हैं शो बाजी नहीं करता हूँ, हमेशा नॉर्मल होता हूँ। चलिए ये भी अच्छी बात है। अच्छा उनके अलावा इकबाल आशारी भाई हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, वेलकम जी। हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, आइए मासूम नो चालाक ब्रो, ओके ओके। किशोर भाई लिखते हैं कि प्यार में भीख मांगने का दर्द समझते हो, और भीख में भी अगर वो प्यार ना मिले उसका दर्द समझते हो। बिल्कुल जी समझते हैं।

ऐसन और बानी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम ऐसन, साला खुश आयो। उदास लड़की हमारे साथ है, हमारी निदड़ी, वेलकम टू यू। कहती वेलकम टू शो ओपा जानी, वेलकम टू यू ओपी। आप कहाँ गुमसुम है ओपी, बताएं तो जरा। हाकिम राज हमारे साथ मौजूद है, शो इज बेस्ट। थैंक यू हाकिम, आप हमें मिठी से सुन रहे हैं। दर्द दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी। वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है। वफा शहजादो मक्सी भाई आपका भी वेलकम हो गया जी। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। एक और मजे की बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाइट एश अगर आप ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं तो भाई आपके पास जो है ना वो फेयरनेस क्रीम है, और उसके अलावा लवली क्रीम जो है ना ये भाई तो आपके लिए मतलब ऐसा है कि गेम चेंजर वाला काम करेगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, सर्दियां हो या गर्मियां हो आप लाजमी लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए सोप भी मौजूद है और फेस वॉश भी मौजूद है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस तमाम दिल वडी कयो।

0: जी नसीम अहमद खोड़ो भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। नसीम भाई छाला तांजो खुश आयो। और मुलाजिम भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम। और उसके अलावा नसीम भाई क्या कहते हैं, काफी टाइम का पोए तमाम के बुधाने जो टाइम मिलियो पर तमाम जा टह के सागा या है बस जियो करे ये ना। और कहते हैं स्क्रीन ते मायू तो सफा भलियो आए न बिल्कुल जी। और कहते मुस्कान अवल हिकड़ी हिकड़ी क्रीम जी डबी तू वठी दे मां लगाए दसा अगर सोनो थी वयस त बी डबी मां पाण वठंदस। अगर इंगी रहयो त पो इलाही सारा लिसनर आइन के मुखे वठी देणी पवंदी। एक दफो ता पाण वठो अगर तमा के मजो अचियो त पो ता जी दिल चोंदी वराए पे वठो। सही आ मां एक के त राजी न कंदम ना मुजा सब लिसनर आइन त मां सोचा दी त ता सब अवल पाण वठो तमा के मजो इंदो बाबा लगाए जडी तमा वाईटी जी क्रीम लगाईंदा ना पो तमा के रिजल्ट मिलंदा पो ता पाणी चंदा पैसा वसूला बाबा
1: लाए तक हेड़ो जादू कयो
0: जी। अब्दुल रजाक जरदारी हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम नवाबशाह, वेलकम वेलकम। निदड़ी कहती है कि मैं यूज करती हूँ व्हाइट एज लवली ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश भी लूंगी। ओके ओके। अहमद कहते हैं थैंक्स। अच्छा चले हाँ ये सुनकर वाकई बड़ा दुख हुआ। ओके जी किशोर भाई कहते हैं अदी हिकड़ी क्रीम सा गड घट में घट एक एसी तो दियो। हाँ सफा नंढड़ी फरमाइश करी तो नंढड़ा फेन मिलंदा है ना सफा इतना नंढा हथ जितना हुंदा है अगर वे चो तो एक वठी जावा वो जरा ओका से बाहर वाला बजट हो जाएगा समझ रहे

ਸਹੀਆ ਤੇ ਗਾਲ ਵੇਸੇ ਥੋੜੀ ਅਸਾਂ ਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਵਫਾ ਨਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਈ ਤਵਾਂਖੇ ਦੱਸਿਓ ਆਹੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਭੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अन्या अगर तुम वाइट एज प्रोडक्ट लगाई ना तो अन्या वधे के सोना थी ना तो तुम लगाए बाबा केंची गालन ते ध्यान नहीं दा गयो एरम कहती है कि प्लीज प्ले ओकी ओकी और कहती दिलबर दोस्त जाने सिद्रा ये आपको डेडिकेट है गाना ओके जी मैं लगाने की कोशिश करूंगी मीरपुर खासी अब्दुल्ला बहरी वालेकुम अस्सलाम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है सॉन्ग सुनाए फायजा अली का ओके जी फायजा अली लगाएंगे यासीन गुडाड़ू हमारे साथ मौजूद है सकरण से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अमा बुधायो कि आयो वाइट एश एंटी स्किन प्रोडक्ट गर्मी में यूज करण सही आहन सही बिल्कुल सही आहन बाबा बिल्कुल गर्मी में यूज करे सगो था तरी तां जला गर्मी में प्रोग्राम आंदो आए न गाल के समझ ना करे यासीन भा तुम बिल्कुल लगाए सको था नो टेंशन सही और फहा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह कहते सलामती शो नाइसा तांजो हमेरा चन्ना जो कोई भी गानो बुधराए जो हाजिर हाजिर भी ओ हुकुम कयो और मीरपुर खास का अब्दुल्ला महर कहते हैं बाजी अच्छा या वरी केड़ी गाला भला अच्छा हिते पैनल थे केंजो ना खाली मैसेज मिलवा त अगर न पढा तांजो त समझी वंजो ठीक है और रसूलाबाद का आबिद हुसैन शंबानी वालेकुम अस्सलाम अदी किताबा पया पढ़े इना पारे वे बगैर हुंदे एहो जैसे फिलहाल तो यो ही आहे बुधो था ना मिलसी वफा सो तव्हां भा जरूर लगाए जो वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर वाइट एज ब्यूटी क्रीम नथा आणो त वाइट एज जी लवली क्रीम त लाज़मी लगाए जो ठीक आहे जी तव्हां बि लवली लवली थी वञो और गोठ नबी दाद बंबरो नारो खां इमाम ॾिनो बंबरो है हिते प्रोग्राम जी ऐं अव्हां जी कहिड़ी तारीफ़ करियां ॿई लाजवाब हो अलाह ॿुधायो

बस साईं वाह पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो था न ॿुधायो त साईं जीअं तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो आहे न त पापा करे वठो अच्छा निदड़ी कहती है कि टॉपिक नहीं ओवर स्मार्ट नहीं बनती मैं जो हूँ वैसी रहती हूँ मैं सैड ही ठीक हूँ अच्छा यानी तव्हां उदास रहण वारा माण्हू आहियो उदास न रहंदा कयो एतिरो उदास जेको आहे न पंकज सिर्फ़ भलो लॻंदो आहे ॿिया प्रेमचंद भाई हमारे साथ मौजूद है हेलो अहमद कहते हैं टॉपिक हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना अगर फंस जाते हैं तो खुद निकल भी बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं अच्छा जी अच्छा यानी सुठो एक्सपीरियंस है तमाम जो माशाल्लाह किशोर भाई एड़ी भविष्यवाणी तो न कयो ना बाबा तू समझो एकड़ो मिनट के लिए बेटा

वासाई वा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जनाब. व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आप कहीं से भी जाकर बसानी परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी जाकर आप ले सकते हैं. तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल कराइए और वहां से इस्तेमाल करने के लिए परचेज कीजिए. अगर आप नंबर चाहते हैं जो कि भाई आपको बताया जाए जिसके ऊपर आप रابطہ करें, तो जनाब नंबर है 03-15-799-0595. नंबर डाल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए. टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जानिब जाती है, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं. आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ.

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
4: सरकार जे तरफ़ां लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं. ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू वज़ारतनि विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़. वासन नक़वी चयो त मिस्री वफ़द जो दौरो बतरफ़ी सहकार जा नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो.
5: सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचति जे लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान. मार्केट मामूल मूजिब फिलियल हूंदियूं. सीनियर वज़ीर शहजी इनाम अहमद चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे. ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे.
4: पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी भारत में थियल आईसीसी मीटिंग में शिरकत खे हुकूमत जी मंज़ूरीअ सां मशरूत करे छॾियो. मोहसिन नक़वी नई दिल्लीअ में थियल गॾिजाणी जी दावत मिलण जी तसदीक कंदे चयो आहे त वज़ीर आज़म इजाज़त ॾिनी त गॾिजाणी में शिरकत लाइ भारत वेंदुसि.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
6: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम
7: उम्मीद के दिए जलते हैं.
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन. मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर. शानदार तालीमी इमारत. प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन. एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार. मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला. सरसब्ज बागीचा. बेहतरीन फर्नीचर. शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स. ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा. एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज. खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले. तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले. स्टडी टूर्स. अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें. मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234. निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453.
9: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
10: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि.
9: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी.
10: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000.
6: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
11: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569, 0300-3583-8569.
12: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर. असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप. ॾेढ 2-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि. फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी. राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम, 03014-5431-456 ऐं तौकीर अहमद, 03016-1623-793.
13: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर.
0: होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
13: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
14: अपना शहर अपना घर महराबपुर और महराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो है ना, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है के जनाब ये जो है ना, ये डॉक्टर की तस्दीक शुदा प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने जो भी प्रोडक्ट लगाया क्वालिटी उनकी थोड़ी सी अच्छी होती है दिखने में, लेकिन आप जब इस्तेमाल करते तो आपको अच्छे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते जैसे आप चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ना सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर की फुल तहकीक शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है, जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन के साथ तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है, और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो बिल्कुल जी, कौन सी बात है जो आपको इस्तेमाल करने से रोक रही है, बताएं जरा मुझे बुधाई वजू मुखे खबर पवे मुखे। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है, जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स शामिल है, और साथ साथ सिर्फ दो दिनों में वाजे नतज के लिए डी स्किन वाइटनिंग क्रीम जो है ये आपकी स्किन को वाइट कर देती है। इस्तेमाल करें और जदीद अज़ा से जो है ना ये तैयार की गई है, और इसके अलावा रात भर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, रात भर आपके चेहरे पर लगी रहती है, तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, और आपकी जिल जो है वो चमकदार हो जाती है, डार्क सर्कल्स वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत सारे ऐसे मसाइल चल रहे हैं जिनका आप खात्मा चाहते हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, चमकदार हो जाती है, जल्द की साख जो है ना वो बेहतर हो जाती है, और इसके अलावा आपकी स्किन खूबसूरत नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फार्मूला जैसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते हैं ना, तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और जनाब उसके अलावा एक और मजे की बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। और जो मुझे मजे की बात लगती है वो ये कि भाई ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना ये ऑल स्किन टाइप वाले ही आप इस्तेमाल किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो या फिर ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर स्किन के ऊपर जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे, और जो प्रोडक्ट आपके ऑल स्किन टाइप के लिए वही प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑल स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल करेंगे, इजीली आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं, फर्स्ट कली नहीं मिल रहे, तो उसके लिए आप डायल करेंगे जनाब 03-15-0595-03-15-799 पर जल्दी से डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, और वहां से जाकर परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखा करिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हाँ ॿुधायो ज़रा, तव्हांजो दुश्मन त न रखंदा न, इन करे तव्हांखे पाण खे रखिणो आहे इहो ख़्यालु। ऐं अगरि तव्हां पंहिंजो ख़्यालु न रखंदा न, त तव्हांजा उमिरि आहे न उहा अञा वॾी लॻंदी, तव्हां उमिरि खां इलाही वॾा लॻंदा जेके माण्हू पंहिंजो ख़्यालु

ना रखना। सो पानो ख्याल रखो, बाबा हमेशा खूबसूरत दिखाई दे और हमेशा अपनी स्किन का अपना ख्याल रखते रहें, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं तो जाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे, आप क्या कह रहे हैं वहाँ जी। बिल्कुल, कमेंट्स भी हैं आपके, पैनल पर मैसेज भी हैं, आपकी कॉल्स भी हम लेंगे।

तो कुछ आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं उसके बाद कॉल्स की। हमारे साथ मुझे मैसेज मिला है जी, अस्सलाम वालेकुम, बी हमें सुन रही हैं, लुबड़ी को वेलकम करती हैं। उसके अलावा हमारे साथ हैं जी यहाँ पर अरीबा, कहती हैं प्यारी आपी जान, जवाब है नो ओवर स्मार्ट में और मेरी दिलबर दोस्त भाभी इरम, हम दोनों बचपन से नॉर्मल है। अच्छा, तो क्या वो एब नॉर्मल होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों कह रहे हैं कि हम नॉर्मल हैं। क्या मतलब वो नॉर्मल नहीं होते? अरे भाई हाँ, वो सभी नॉर्मल होते हैं। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और इरम कहती हैं मेरी दोस्त ये आपको डेडिकेट जाता है गाना, मैंने बिल्कुल ही आपका गाना जो है ना वो सर्च किया तो मुझे यूट्यूब साहब ने बोला कि ये गाना हमारे पास नहीं है, या तो आप गाने का कोई मिस्टा मुझे लिखकर सेंड कर रही हैं, जिस वजह से ये आपकी जो लाइन्स है ना ये यूट्यूब साहब को जरा पसंद नहीं आई, तो आप जरा गाने का टाइटल लिख के भेजा करें जिससे मुझे गाना ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ है फ्राम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सलाम पाकिस्तान, पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज रहमान मुगल हई, रहमान मुगल रोज मुखावेसरी बने तो मां कोशिश कदम हलाईंदम तव्हांजो गानो, और गोट हाजी गुलाम खास के लिए झंडो मरी खां कुर्बान खास के लिए ससगढ़ मौजूद आए झंडो मरी वारो भाई अथव गोट मोहम्मद तैयब थे बुखा भी बोला थे बू कहते तव्हांजो शो वेरी नाइस आहे हाय अल्लाह मसदको वण्यावे ओगरी तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया कोन, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहे कोन, इहो तव्हां मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए, और जरा मुझे बताइए कि आपके एरिया में मिल रही है नहीं मिल रही है, और उसके अलावा नंबर जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर आप रابطہ किया करें। ओके जी, यहाँ पर प्रेमचंद भाई हमारे साथ है, प्रेमचंद भाई कहते हैं मुझे फायजा अली का गाना सुनाइएगा, फायजा अली जो गानो बिल्कुल तां के बुधराइंदा सी, दर्दे दिल कहती हैं कि हाय ना ना मैं ना मैं स्मार्ट हूँ ना ही मैं बनने की कोशिश करती हूँ, एक बार किया था उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, सबक मिले बने नन निदड़ी तवा ॾाढा भला आयो माशाल्लाह। और उनखां अलावा ये वीरू मल मेघवार भाई लिखते हैं सिद्रा सिस्टर हमें भी स्मार्ट होना है, और साबुन लगाएं या क्रीम लगाएं आप ही बता दें हमें, भाई जान तव्हां ॿई चीज़ू लगायो, हिकड़ी चीज़ न लगाईंदा कयो, तव्हां साबुन भी लगायो तव्हां क्रीम भी लगायो, छो त ॿई चीज़ू अलॻि अलॻि आहिनि ऐं ॿई चीज़ू तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहिनि, सो जेकी चीज़ू तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहिनि उहे सभु लगायो, ठीकु आहे, तव्हां साबुन भी लगायो तव्हां क्रीम भी लगायो भले तव्हां फेस वॉश भी लगायो, ऐं हा वाइट एसी लवली क्रीम त लाज़मी लगाइजो, सम्झो था वाइट एसी क्रीम जेका आहे तव्हां फेयरनेस क्रीम जेका आहे उहा तव्हां ॾींहं जो लगायो, जेका ब्यूटी क्रीम आहे तव्हां राजो लगाए, समझो ना कदें कदें तला पान ते खिलाईंदी आ मैडू गलाईंदी आ हे इतना कोई कैसे बोल सकता है लेकिन मैं बोलती हूँ। आबिद हमारे साथ है, फेरोज अली बिरोही भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी, ऐसे तव गानो लिखो आए बिल्कुल तांजो गानो हलाइंदा सी पर हते एकड़ो मोट गानो आए जेको फायजा अली जी आवाज में गानो आए तो सब फायजा अली जो गानो बुधंदा सी उन का पोए वरी तवाजो गानो भी हलाइंदा सी, सही सो ही गानो डेडिकेट वेंदो अलाए कें फरमाइश कयो विसरी वियो पर जिन जिन फायजा जे गाने जी फरमाइश कई और इन सभिनी खे डेडिकेट आहे, बिल्कुल जी प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तव्हां लगायो था खूबसूरत थियो पिया ऐं खूबसूरती खे वेलकम चओ पिया, ऐं जेकी जेकी माण्हू खूबसूरत थियणु चाहिनि था उहे सभु इस्तेमाल कनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं वाइट एश जा प्रोडक्ट, सम्झी विया। अच्छा मुलीर अमीर बख्श भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका।

किशोर भाई बस ॾिसंदा वञो ॾिसंदा वञो. अच्छा एसन छा थो चए, वेसे क्रीम जी डबी ते छोकिरे जो फोटू छो न आहे हूंदो? कुझु टाइम पहिरियां मूं बि इहा ॻाल्हि सोची हुई, पर मूं थोरो ॾिठो त जेके काकनि वारियूं क्रीम हूंदा न, ते काकनि जा फोटो हूंदा आहिनि. इट्स नॉट अ बिग डील, सम्झो था. तारिक खान कहते हैं डी स्किन क्रीम व्हाइट एश आउट स्टैंडिंग रिजल्ट देती है. बिल्कुल जी तारिक खान आपने सही कहा है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स है, जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता जा रहा है. तो बाकी जो लोग लगाना चाहते हैं वो भी जल्दी से लगाए, ठीक है, कहीं देर ना हो जाए. और नजीर सिंधी कहते हैं हाय हेलो आरजे सिद्रा जी, आप कैसी हैं? सो इज वेरी वेरी नाइस. आई एम नजीर सिंधी फ्रॉम डहर की. चलें जी, आपने सबको सलाम दिए हैं, सो वालेकुम अस्सलाम.

अच्छा वफा मीर मुनव्वर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। सागर कतरी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वेलकम मीर, आप हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं जी, आपको वेलकम करते हैं इंडिया पंजाब से, आप हमारे साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं सागर। और दुर्गरम सहू हमारे साथ हैं, अगर मैं आपका नाम सही नहीं रीड कर रही हूं तो माजरत करते हैं। दुर्गरम सहू आपको वेलकम करते हैं जी, आप इंडिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनवर भाई कहते हैं कि हमने ख्याल नहीं रखा तो हम भी बड़े लगते हैं, यही बात है ना, मैं तो मतलब मुझी ता गाल के मनो सीरियस वो चवन वो मुझे तलाय कहते हुए मुख्य तलाए छो बार समझी करे मुझे गालन के हेडे होडे करे सड़ींदा न कंदा क्यों अला मस्याणो मणू है।

अच्छा अच्छा मां त स्मार्ट आया न बस ओवर ओवर स्मार्ट थियण जी कोशिश न आया करंदी अच्छा मोहम्मद मीरन जे कराणी भाई जे का बाबासी मेरे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया ओके जी सो तमाम से गुड मौजूद है संजो प्रोग्राम बुधंदा रंदा पूरे पूरे 3 बजे तक ठीक है ना 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है सो आप हमारे साथ मौजूद रहिए और जरा इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे आसानी तो आप परचेज करते जाइएगा और साथ ही साथ जो है ना डायल कीजिएगा 03-1579-0595 ये नंबर डायल कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज करते जाइए टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक नहीं बल्कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होगी उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो आपने कहीं नहीं जाना बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
2: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: रखंदी आहे त सिहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां।
1: माइक्रो बीट्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में।

बल करा देंगे, ठीक है, या फिर आपको गाइड कर देंगे कि आपने कहाँ से जाकर परचेज करने हैं। बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको इजीली सारी बातें समझा देंगे, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ जो है ना, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, और जब बनने की कोशिश की और आप फंस गए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, फिर उसे बाहर निकले हैं, तो कैसे निकले हैं? क्योंकि ऐसा हो जाता है कई मरतबा कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, खास करके जब हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है ना, वो बड़ा कैची टाइप होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि भाई इसे अगर हम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई शर्मिंदा भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते और कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। तो ओवर स्मार्ट पहली बात तो मत बना करें, और दूसरी बात, बने तो जरा सोच समझ कर बने, सही है।

नौकरी जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और सभी स्वीट सिस्टर्स को। टॉपिक ना नो कभी भी नहीं। वैसे फजीला की ये बात बड़ी अच्छी है कि आप लोग ये चीज भी नोट कर रहे होंगे कि फजीला जब भी मैसेज करती है तो उसमें एक ना दिन मेंशन करती है कि आज कौन सा दिन है। तो ये भी एक चीज है कि अगर समझ गए होंगे।

ओके सो फजीला के बाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी लुबना। कहती है कि कुछ चीजें सुकून देती हैं और तुम्हारा चेहरा और आवाज उसमें सबसे पहले आता है। फॉर यू सिडू जानी, थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी लुबना। और उसके अलावा हिंजी हमारे साथ अच्छा युसरा हमारा शो सुन रही है। युसरा ने सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजा है, सो युसरा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये बाजी ही वारो गानो ता हलायो मरा तो कैजे लाए मरा न दोस्त आ न प्यारा मुनवर होली जी आवाज में गानो आ। इमरान अली बरोई आप हमें सुन रहे हैं लाड़काना से। ओके मरा तो कैज लाए मतलब आए तो सैड गानो पर अलाए शुरू के न गाने तो खिला ही दिया। और न खा अलावा रसूलाबाद का आबिद हुसैन शम्बानी भाई वालेकुम असलम कहते हैं यो मत आगे सुबह नहीं बुदाई नाम ठीक है। और गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते हैं वाइट एस जी लवली क्रीम शहर में आंदो आहे इस्तेमाल कया पर रिजल्ट मिले तो पोए तवा के बुदाया। चलो चलो ठीक है ठीक है, असा इंतजार कदा सी बाबा इते बैठा आयो। गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी का कुर्बान खास के लिए ससा गड मौजूद आए भाज मोहब्बत हूं प्रोग्राम बुदो पया सुना भाई झंडो मरिया में मिले थी कौन है डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर मिले थी कौन वाइट एज प्रोडक्ट यू तो मुझे बुधाए जो जी असा ताजे झंडो मरिया में भी अवेलेबल करायूं।

मन समझो था मरण जो ना जरूरी है मरण तो कें लाइ मरा न प्यार आ न दोस्त आ भी उनकी मरण आए लेकिन यह तो सही गाल ना है अलाए जो ना गाने दे वाकई थोड़ी खिल हिंदी मतलब लॉजिक ना है ना गाने सोचने की सलाह खत्म थी।

हा बाबा माण्हू कूड़ ॻाल्हाईंदा वतन था सो कंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन न कंदा कयो सही आहे और ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है अच्छा ज़हीर अब्बास भाउ तव्हांजो मोहबतूं तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया उनखां अलावा मीर पीर बख्श टालपुर हमारे साथ मौजूद है तव्हां असांजो प्रोग्राम 88 तां ॿुधो पिया जो मोहबतूं प्यारे भाउ जूं अच्छा एसन चलो इहो जेको आइडिया आहे न तव्हांजो इहो असां नेक्स्ट टाइम अप्लाई कंदासीं सही आहे फ़िलहाल जे लाइ त एतिरो ई अभी के लिए इतना ई अच्छा आदिल बिल्कुल आप गुड बॉय बन चुके हैं ऐसे ही गुड बॉय बने रहे हैं बहुत अच्छी बात है हाणे तव्हां विणो था अला अर्ज मोहम्मद गोला हमारे साथ मौजूद है ज़िला जेका बात में तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया और सबा खान हमारे साथ सबा खान वालेकुम असलाम एसन जादू जी हाणे इहे नचो वरी न त जिन अची वेंदो माण्हुनि खे अगरि टे चारि ॾींहं सुकून हूंदो आहे न प्रोग्राम में पोइ वरी हिकु ॿिनि खे थोरो इंजन अची वेंदो आहे पोइ वरी थोरो माहौल ख़राबु करण जी कोशिशि कंदा आहिनि पर बसि छा था चई सघूं

अच्छा ये हमारे साथ ज्वेलरी खां खालिक लाशारी के अदी ज्वेलरी में क्रीम न पयो मिले। चलो ज्वेलरी में असा तवां जला जल्दी अवेलेबल कराए वठंदासी। पर भा तवां एकडो कम कजो, तवां के जको नंबर बुधाय थी ना हाणे उन नंबर ते तवां एको दफो राप्तो कजो, उनन के चेजो त ज्वेलरी में जका ना क्रीम नथी मिले त हु जी अवेलेबल कराए। उनन के चो त असा रेडियो बुधना ता जो प्रोग्राम बुधनायो, वाइट एज की क्रीम ऐ डी स्किन जी क्रीम असा जे ज्वेलरी गोठ में भी अवेलेबल करायो। सही आ, सो तवां डायल कना 03-15-799-0595-7990595। ही नंबर तव्हां डायल कंदा, हिन नंबर ते तव्हां राब्तो करण खां पोइ पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। हिन खां पोइ जेके बि प्रोडक्ट्स आहिनि, सभु प्रोडक्ट तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थींदा, उतां पोइ तव्हां जेको आहे न वञी इज़ीली वठी सघो था। सही आहे।

बिल्कुल जी, असां कल्ह बि होशियार हुआसीं, असां अॼु बि होशियार आहियूं, इनशाला सुभाणे बि होशियार हूंदासीं। हक़ीक़त आहे। हुन खां अलावा आदिल बहुत शुक्रिया। और स्मार्टू गोपांग भी हमारे साथ मौजूद आहिनि जी, वेलकम वेलकम। और हुन खां अलावा हिदायतुल्ला, तव्हां जूं बि मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पियो असांजो। ऐं हीउ हिकिड़ो सॉन्ग लॻायो अथमि, प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक आहे, सम्झो था। निदा कहती है, जिया कहां घूमे इतने टाइम से, वो बोलो कभी यहां भी चक्कर लगाओ। वैसे जिया मसरूफ आ लाइक थे।

अनवर भा तव्हां जो गानो जेको आहे न मूंखे मिलियो ई न, वरी पोइ कॾहिं हलाए वठंदासीं। ऐं न बिल्कुलु मतिलबु मूंखे इहो हिकिड़ो फ्लैक्स आहे, मां लाइफ में हिकिड़ो फ्लैक्स हणंदी आहियां, त मां कॾहिं बि कंहिं बि कॉन्सर्ट ते न आहियां वई। ऐं इहो मूंखे सुठो लॻंदो इंट्रोवर्ट माण्हुनि जे लाइ शायदि इहा वॾी ॻाल्हि आहे या सुठी ॻाल्हि आहे। सो ईअं ई आहे बिल्कुलु। अच्छा, हिन गाने सां गॾु मूं हिकिड़ी शायरी रखी, पर शायदि टाइम जेको आहे न थोरो ख़तम थी वियो आहे। सो हिते हाणे तव्हांखां इजाज़त वठण जो वक़्तु जेको आहे न सफ़ा क़रीब थी चुको आहे। सो तव्हांखे वेंदे वेंदे बिल्कुलु ॾसी वेंदासीं त बाबा हीउ जेको प्रोग्राम आहे वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, ही तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे जंहिंमें तव्हां असां जेको आहे न गॾु हूंदा आहियूं 1 बजे खां 3 बजे ताईं, ऐं पूरो हफ़्तो असांजो अवांजो साथ हूंदो आहे। सो प्रोग्राम में तव्हांखे बिल्कुलु ख़ूबसूरती जो ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं, तव्हां सां गॾु मोहबतूं हूंदियूं आहिनि, कचहरियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं हीउ इंटरटेनमेंट जो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे जेको तव्हां ताईं पहुचायो वेंदो आहे वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सां। वरी इन सलाह तव्हां सां मुंहिंजी मुलाक़ात सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं, तव्हांजो असांजो साथ रहंदो। सो ईअं बिल्कुलु जॉइन कंदा, ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी, गानो तव्हांखे ॿुधणु ॾींदमि। सही आहे। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: इट्स 3 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको भी ले डूबेंगे. मनचाहत केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जो साफी जे सवाल से जवाब. मनचाहत केस में अदालती पेशी वक्त पिंकी जो दाहूं मनपसंद बयान वठण जे लाइ पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम. अनमोल उर्फ पिंकी चयो त बेगुनाह आहियां, कुझु बि नाहे कयो, सभु कुझु अॻूणो मुड़ुसु कराए रहियो आहे. 22 जे पहिरीं लाहौर मां खयो वियो, 15 ॾींहं रखियो वियो, 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो. केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि. जंहिं फ्लैट मां गिरफ़्तारी ॾेखारी वई मुंहिंजो नाहे. अॻूणे मुड़ुस 3 महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई, निकाह रजिस्टर थियल न हो.

0: वंशात केस में गिरफ्तार कुकीन क्वीन अनमोल और पिंकी कराची ऐं मलीव जी अदालत में पेश। पुलिस जो अदालतनि खे जांच लाइ पिंकी जो वधीक रिमांड ॾियण जो इस्तदा। मलीव जी अदालत पिंकी जी रिमांड वारी सज़ा रद्द करे छॾी। जेल मोकिलण जो हुकुम जज ऑफिसर खां 14 ॾींहनि अंदरि चालन तलब। पुलिस जो अदालती फैसले खे चैलेंज करण जो ऐलान। कराची जी अदालत पुलिस जी रिमांड वारी दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो अञा जारी नाहे कयो।
1: IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। FPR जो टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1,727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो शामिल।
0: वफ़ाकी घर वज़ीर बासन नक़वी ऐं ममलकती वज़ीर तलाल चौधरीअ सां मिस्री वफ़द जी मुलाक़ात। बतरफ़न लाॻापनि समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही मुल्क़नि जे घर वज़ारतनि विच में सहकार वधाइण ते तफ़ाक़। बासन नक़वी चयो त मिस्री वफ़द जो दौरो बतरफ़ी सहकार जा नवां ढग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो।
1: सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजी रिना मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे।

0: कन्यारों में सिंध पब्लिक सर्विस में मेरिट की मुबैना लताल खिलाफ तालीमी तनकीदी फोरम के सर ते एहतजाज मुजाहिरीन पारा हाईकोर्ट के गडियल चटाभेटी इम्तिहान का नतीजा मुअत्तल करने वाले फैसले की आज करप्ट अमलदारों के हटाए एस पी एस सी के खुद मुख्तियार इदारों बढ़ाने का मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3385 569 0300 3385 69।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320180003।

रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

ॻाल्हियूं ई नाहिनि कयूं। उन्हनि सां कुझु मसइलो आहे, हू चरिया आहिनि। चीनी सदर बि ईरान वटि एटमी हथियार न रखण वक़्तु IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण जी साल जी बजट रखी छॾिया। FBR जो टैक्स सदफ 15,278 तजवीज़, 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जे बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1,727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो शामिल।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जीएसखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम लीगल कॉर्नर साण करे आवां आहियां अहां जो पंहिंजो मेज़बान बाबर शेख। इन उम्मीदुनि सां त अहां बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा। अला पाक अवां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे। समन प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जेको अवां हर हफ़्ते ॿुधंदा आहियो, ऐं लीगल कॉर्नर प्रोग्राम में लीगल अवां खे नॉलेज मिलंदी आहे तमामु घणी, ऐं असां सां गॾु स्टूडियोज़ में लीगल एक्सपर्ट मौजूदु हूंदा आहिनि। सो लीगल एक्सपर्ट खे तव्हां बिल्कुलु ॾिसी रहिया आहियो स्क्रीन ते। उन्हनि जो जेको आहे इंट्रोडक्शन कराइण खां पहिरियां तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो टॉपिक आहे सेक्शन 489 FPPC, जंहिंमें चेक बाउंस ऐं उन ते कानूनी कार्रवाई कहिड़ी थी सघे थी। इन टॉपिक सां रेलिवेंट असीं अॼु गुफ़्तगू कंदासीं। इन टॉपिक सां रेलिवेंट तव्हांखे तमामु घणी अॼु नॉलेज मिलण वारी आहे। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त चेक बाउंस जॾहिं थिए पियो त उन में जॾहिं डिसऑनेस्टी साबित थी वञे त उन ते जेको आहे त अंडर दिस सेक्शन 3 सालनि ताईं उन्हनि खे जेल बि थी सघे थी, ऐं इन सां गॾोगॾु फाइन बि उन ते थी सघे थी। हाणे कहिड़ी सिचुएशन में चेक बाउंस में जेको आहे त इहो सेक्शन अचे पियो ऐं उन ते तव्हां इहा कार्रवाई कीअं कराए सघो पिया, ऐं फॉर इंस्टेंस तव्हां खां जेको आहे त चेक कंहिंखे मिली वञे पियो ऐं डिसऑनेस्टी साबित न पई थिए, अॻिलो तव्हांखे जेको आहे त प्रेशर विझी रहियो आहे, इलीगल तरीक़े सां तव्हां खां पेमेंट वठी रहियो आहे, त उन मुतालिक सॼी अॼु जेको आहे नॉलेज तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजो कॉन्सेप्ट बि तक़रीबन क्लियर थी वेंदो। स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि, एडवोकेट हाई कोर्ट आहिनि ऐं 10 सालनि खां वठी तक़रीबन एडवोकेसी सां वाबस्ता बि आहिनि, लेक्चरार आहिनि लॉ कॉलेज में, एज़ वेल एज़ तमामु घणा इन्हनि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि त क्वालिफाई थियल आहिनि, यानी नॉलेज इन्हनि खे तमामु सुठी आहे लॉ जे मुतालिक़, जेका असांखे हर वीक असांखे ॾींदा आहिनि ऐं असांजी नॉलेज में यकीन इज़ाफ़ो कंदा आहिनि। सो शहबाज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियोज़।
1: वालेकुम सलाम बाबर।
0: शहबाज़ साहब, अॼु जो असांजो टॉपिक जीअं आहे चेक बाउंस, अक्सर अव्हांखे ख़बर आहे त चेक जंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे खणी, उहो त ईअं पर्ची टाइप ॾेई छॾींदो आहे, ऐं जॾहिं हिन सेक्शन खे जॾहिं हू ॾिसंदो ऐं उन ते ॾिसे पियो त सज़ा इहा कीअं थी सघे पई, त मां सम्झा पियो चेक ॾियण खां पहिरियां उहो ज़रूरु सोचींदो त यार चेक ॾियणु घुरिजे या न। सो सभ खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां हिन सेक्शन ते थोरो ओवरव्यू ॾियो त इन जी लीगल डेफिनेशन आहे छा।
1: सेक्शन 489F, डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक, जेके असां चवंदो चेक बाउंस, बिफोर जंपिंग ग्रेवली इन टू दिस टॉपिक, मां हिकिड़ो कुझु कॉन्सेप्ट आहिनि उहे क्लियर कंदुमि जेके असांजे ॿुधण वारा आहिनि ॾिसण वारा आहिनि, त 3 खां 4 ॻाल्हियूं आहिनि जेकी असां हिते सम्झाइण लाज़मी आहिनि, त उन खां पोइ असांखे सम्झ में ईंदो त चेक बाउंस कहिड़ी सूरत में थी सघे थो। सभ खां पहिरियों जेको पॉइंट आहे चेक बाउंस खां अॻु में, त असांखे इहा ख़बर हुजे त चेक ऑनर कीअं थींदो आहे ऐं चेक डिसऑनर
0: कीअं थींदो आहे।
1: चेक ऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की वेन अ चेक इज़ बींग प्रेज़ेंटेड बिफोर द बैंक एंड द बैंक रिसीव्स इट एंड देयर ओन विड्रॉ द कैशिस टू द पर्सन टू हूम द चेक इज़ बीन गिवन। ठीक आहे, त हिकिड़ो माण्हू वियो जेके चेक इशू थियो, उहो बैंक वियो, बैंक हुनखे ऑनर ॾिनो, ठीकु आहे, हुनजी तसदीक कई, तसदीक करण खां पोइ हुनखे जेको आहे न अमाउंट कढी ॾेई छॾियो। डिसऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की चेक जॾहिं ॾिनो वियो, वेन द चेक वॉज़ गिवन ऐं चेक वॉज़ रीच टू द बैंक, बैंक मैनेजर या बैंक जो कोई बि अमलो जेको बि हुते वेठो आहे प्रेज़ेंट कैशियर आहे, सो ही विल सी फ्यू पॉइंट्स की अगरि उहे उन लीगल पॉइंट्स अगरि लहनि था पिया त ठीकु आहे, अदरवाइज़ चेक विल बी डिसऑनर। जीअं मिसाल चेक डिसऑनर कहिड़ी सूरत में थींदो आहे, त सभ खां पहिरियों इनसफिशियंट फंड हुजे, चेक में अल्टरेशन हुजे, त कॾहिं कॾहिं अल्टरेशन जो सीन इहो हूंदो आहे, मक़सदु पर्पज़ इहो हूंदो आहे अल्टरेशन जो की अमाउंट हिकिड़ो लिखियलु आहे, अमाउंट में कॾहिं असां 0 वधाए छॾंदाऊं, कॾहिं अघ खे चेंज करे छॾंदा,
0: कॾहिं
1: करेक्शन थियलु हूंदी आहे, त हिनखे अल्टरेशन चवंदा आहिनि। ॿियो, या त अकाउंट सीज़ त न आहे, टियों ट्रांसेक्शन टाइमली रुकी वई आहे या ट्रांसेक्शन रुकाई वई आहे, सो कुझु ॻाल्हियूं हुन उनखे ॾिसी करे चेक खे रिटर्न कयो वेंदो आहे, उन रिटर्न ऑफ चेक खे चवंदो आहे डिसऑनर ऑफ चेक। ऐं ॿियो, इन खां अलावा हटी करे 3 शयूं ॿियूं बि आहिनि जेके सम्झणु लाज़मी आहिनि इन चेक वारे इशू में। सभ खां पहिरियों असांखे

0: इहो ख़बर हुजे त ड्रावर केरु आहे, ड्रावी केरु आहे ऐं पेई केरु आहे. तव्हां अगरि चेक खणी ॾिसंदो त हमेशह चेक जे मथो मथो लिखियलु हूंदो आहे पेई, उन जे अॻियां लिखियलु हूंदो आहे बीअरर. पेई उहो माण्हू आहे जंहिंजे नाले ते चेक इज़ बींग इशूड, ठीकु आहे, जेको चेक विड्रॉ कराए सघे थो. ड्रावर उहो हूंदो आहे द वन द पर्सन हू इशूज़ द चेक, जेको चेक इशू कंदो फॉर द पर्पज़ ऑफ कोई भी ट्रांसेक्शन अगरि हुन कई आहे, या हुन को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हुनजी रहे थी पई, या को प्रोमिस हुन कयो आहे, या रीपेमेंट ऑफ लोन आहे, त उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक अमाउंट लिखी ॾींदो जेको पेई वञी करे हुनखे विड्रॉ कराईंदो. हाणे किथे विड्रॉ कराईंदो, हुनखे चइबो आहे ड्रावी. ड्रावी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे, हुनखे अमूमन असां हुनखे बैंक चवंदा आहियूं, द प्लेस वेयर द चेक इज़ बींग ड्रॉ या फ्रॉम द पेमेंट इज़ बींग टेकन, उनखे असां छा चवंदा
1: आहियूं बैंक
0: ड्रावी चवंदा आहियूं. ठीकु आहे, इहे कॉन्सेप्ट्स मिलाए करे असां छा कंदा आहियूं त इहो कॉन्सेप्ट मिलाए करे इहे सॼे कॉन्सेप्ट ते असां चवंदा आहियूं इहो चेक सां रिलेटेड आहे ऐं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सां रिलेटेड आहे. ऐं अगरि इन में बदनीयती अची वञे ऐं उनजो मिसयूज़ थी वञे, उन कॉन्सेप्ट ते इहो पूरो सेक्शन बीठल आहे 489F, डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक, चेक बाउंस थी वञे.
1: अच्छा, मतिलब जेको आहे बदनीयती साबित थिए तॾहिं ही सेक्शन थिए पियो, अदरवाइज़
0: बदनीयती ईअं आहे बाबा. त मां रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी हिकिड़ी अथॉरिटी पढ़ां पियो, उनमें टे इनग्रीडियंट्स इंपोर्टेंट आहिनि डिफाइन करण जे लाइ, त वाकई उनमें जेको आहे न चेक जेको बाउंस थियो आहे, उनमें टे शयूं अगरि लाज़मी आहिनि त चेक डिसऑनेस्टली बाउंस थियो आहे. सपोज सभ खां पहिरियों इशू, उहो कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे, कंहिं इशू कयो आहे, ठीकु आहे. ॿियो उन में ॾिठो वेंदो त जे पर्पज़ सां इशू कयो आहे उनजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन्स छा आहिनि, ठीकु आहे, छा उहो प्रोमिस जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, रीपेमेंट ऑफ लोन जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, हुनजी लीगल कैपेसिटी छा आहे, उहा कंहिं एग्रीमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिनो वियो आहे. टियों पर्पज़ इहो आहे त चेक इशू करण जे टाइम, चेक इशू करण जे टाइम छा उन में डिसऑनेस्टी शामिल हुई.
1: ओके,
0: अगरि डिसऑनेस्टी शामिल हुई त जेको आहे न चेक डिसऑनर, या उनखे असां चवंदो 489F, डिसऑनेस्टली इशूइंग द
1: चेक,
0: माज़रत सां, डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक.
1: ऑल राइट, सो लिसनर्स, असां तव्हांजो फीडबैक बि प्रोग्राम में शामिलु करे रहिया आहियूं ऐं गॾो गॾु टॉपिक ते जेको आहे त असीं एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब सां गुफ़्तगु करे रहिया आहियूं. शहबाज़ साहब, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि त रीज़न्स थी सघनि पिया चेक जेको आहे डिसऑनर थिए पियो, उनमें हिकिड़ो रीज़न इनसफिशियंट बैलेंस बि थिए पियो.
0: जी जी.
1: फॉर एक्सटेंस अगरि ॻाल्हि कयूं, कंहिं लख रुपए जो चेक कंहिंखे ॾेई छॾियो, ठीकु आहे, ऐं कोई बि बैंक चार्जिस कॾहिं कॾहिं कटिजी वञनि पिया, मंथली तव्हांखे ख़बर आहे त डेटा या बंडल एक्टिव हूंदा आहिनि, पोइ उहो जेको आहे न इनसफिशियंट बैलेंस जी वजह सां बि जेको आहे न चेक रिटर्न हलियो वेंदो आहे, त छा इहो अचे पियो डिसऑनेस्टली हिन में, इन सेक्शन जे अंडर?
0: बदनीयती डिसऑनेस्ट, मतिलबु अगरि बदनीयती खे सभ खां पहिरियों डिफाइन था कयूं कि सिचुएशन छा हुई. हिकिड़ो माण्हू मुआदो थो करे, कोई बि हिकिड़ो लीगल एग्रीमेंट थो करे कि मां तव्हांखो गाॾी हिकिड़ी मोटरसाइकिल आहे जेकी तव्हांखां मां 2 लख रुपए में वठां थो, फॉर एग्ज़ाम्पल. हाणे हुन 1 लख जो तव्हांखे नेट कैश ॾेई छॾियो, जेको ॿियो चेक आहे हुन छा कयो, बकाया जेकी पेमेंट आहे उहा चेक जी सूरत में तव्हांखे हुन हैंड ओवर कयूं, त हिन ई महीने जे अंदरि 15-15 ॾींहं जे डिफरेंस सां तव्हां 2 डिफरेंट चेक, डिफरेंट हुन स्पेसिफिक डेट ते वञी करे तव्हां विड्रॉ कराए सघो था. 1 लख रुपियो हुन ॾेई छॾियो, ट्रांसेक्शन थी वई, कंसीडरेशन थी वई. कारण कंसीडरेशन में हिकिड़ी टर्म तव्हां पढ़ी आहे, क्विड पूरो कयो,
1: हिन
0: मतिलबु रिटर्न ऑफ समथिंग. रिटर्न ऑफ समथिंग में छा आहे, तव्हां गाॾी हैंड ओवर करे छॾी, हाणे तव्हांजे लाइ कंसीडरेशन अमाउंट आहे, हिकिड़ो हाफ अमाउंट मिली वियो, हाफ अमाउंट रहे थो. हाणे 50,000 जा हुन 2 चेक तव्हांखे ॾेई छॾिया. फॉर सपोज हुन तव्हांखे 1 लख रुपियो ॾिनो, 1 लख रुपए खां पोइ हुन पहिरीं ट्रांसेक्शन थ्रू कराए छॾी, जंहिंमें तव्हां कैश विड्रॉ करे छॾियो. लेटर ऑन कुझु रीज़न्स जे करे या कुझु एमरजेंसी जे करे हुन पैसा अमाउंट विड्रॉ कराए छॾिया, ठीकु आहे. हुन में हुन बदनीयती ज़ाहिर नथी थिए, छो त पहिरियों त हुन तव्हांखे 1 लख रुपए हिते स्पॉट ॾिनो, वरी उनखां पोइ जेको तव्हां पहिरियों जेको चेक आहे जॾहिं तव्हां विड्रॉ करायो त उहो बि हुन में अमाउंट अवेलेबल हुयो,
1: ऐं उहो
0: तव्हांखे सफिशियंट रीज़न ॾिए थो त मां तव्हांखे छोकि कुझु अमाउंट कढाए वरितो आहे, अमाउंट कुझु मां 10,000, 15,000, 20,000 कढाए छॾिया आहिनि, बाक़ी जेको आहे न मां तव्हांखे या त हिन चेक जी सूरत में मां हिन में विझराए छॾंदुमि त बाद में कढाए छॾो. त हिते डिसऑनेस्टी न आहे. हाणे डिसऑनेस्टी कॾहिं थी क्रिएट थिए, तव्हांखां 1 लख रुपियो तव्हांखे ॾिनई, तव्हांखे गाॾी वरितई, जीअं तव्हां पहिरीं पेमेंट लाइ चेक खे विड्रॉ कराइण लाइ वियो, उहो थी वियो तव्हांजो
1: डिसऑनर थी वियो.
0: ठीकु, तव्हां सम्झो, ठीकु आहे, इट्स ओके. तव्हां हुनखे ॿुधायो त भई मुंहिंजो चेक, हुन चयो ठीकु आहे साईं, मां पैसा विझराए थो छॾां. तव्हां वरी ॿीहर वियो, वरी डिसऑनर थी वियो, वरी तव्हां जेको ॿियो चेक तव्हांखे ॾिनी पर तव्हां उन लाइ बि वियो त उहो बि डिसऑनर थी वियो त नाउ द इंटेंशन शुरू खां ई वठी हिननि जो बदनीयती आहे शुरू खां ई वठी क्रिमिनल इंटेंशन हुन में ज़ाहिर थो थिए त हिननि जेको असांखे चेक जेको इशू कयो आहे उन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे
1: कुछ फीडबैक भी है जो प्रोग्राम में शामिल करने वालों आया शेबा साहब स्क्रीन से भी काफी सारा मैसेजेस अचन पे जी पे भी अनाउंस कर चुको आया सजा तो शामिल नहीं सकता टाइम घट हों इन अस थोड़ा थोड़ा शामिल कदासी सो एक वॉइस नोट है जो व्हाट्सएप से रिसीव थो है बुधाई हल तुम भी असनर्स व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सूथा असो नंबर है 03000113488 सो एक ही वॉइस नोट पे चवन अचो बुधूँ पे
2: असलकुम सर माई नेम इज़ जुबैर अहमद सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे अगर हमें कोई फेक अकाउंट या क्लोज अकाउंट का चेक दे दे तो उसकी पनिशमेंट क्या बनती है उसे सजा क्या मिलेगी तो प्लीज़ सर हमें गाइड कीजिएगा
1: अच्छा शेबा साहब इन्हें तो फेक अकाउंट की गाल कई या ये अक्सर डिठा है मूं भी मानू काफी उन्हें वे टे चार चेक बुक्स होंदियन पो उनमा उनके जस्ट खबर या वो जो है हासिल करना चाहिंदा तो असें जस्ट टाइम खपे जी तगाने गाल कई तो चेक बैलेंस न होंद फोन कह ठीक है बैलेंस वेझ रहा तो हाँ इन विच में घना डी उनके मिली गया
0: बिल्कुल
1: इो साबित करने लाइ काफी ना या डिसऑनेस्ट या डी पे हासिल करना चाहे जो क्लियर असा गाल न पो करे
0: सो वापस उन टॉपिक जाते छो त पहिरों त तव्हां इंटेंशन ज़ाहिर कंदो अगरि हिकिड़ो फिनेंशियल ट्रांसेक्शन थिए थी पई उहा कंटिन्यूअस आहे ऑल ऑफ सडन किथे ब्रेक थी थी वञे कुझु लीगल मामला जे करे या फिनेंशियल इशूज़ जे करे उहो तव्हांखे हिकिड़ी पेमेंट न ॾिनो आहे पर असां हुन जी जेकी प्रीवियस इंटेंशन आहे उनखे ज़रूरु ॾिसंदासीं त प्रीवियसली हुन असांखे जेकी रक़म आहे उहा टाइम ते पेमेंट कंदो आयो आहे पर जेकॾहिं इंटेंशन शुरू खां ई वठी करे इंटेंशन बदनीयती ते शामिल आहे त उहो डिसऑनेस्टी में हलियो थो वञे जंहिंजे लाइ असांजे लाइ इहो पूरो जो पूरो सेक्शन अवेलेबल आहे हाणे एज़ पर जे तव्हांजो सवाल आयो त फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक अकाउंट आहे या जेको
1: आहे
0: चेक जेको आहे न उहो बि जेको आहे न जाली चेक थो असांखे ॾिए हाणे इहो हिकु न इहो ॿ खां टे सवाल आहिनि
1: ओके
0: सभ खां पहिरियों त उहो फोर्जरी क्रिएट करे थो पियो फोर्जरी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की कंहिं बि माण्हू खे डिसीव करणु कुझु अहिड़ो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे जेको हुन जी या त ज़ातियात खे अटैक करे या त उनखे नुक़सान पुॼाए हिकिड़ो फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करणु ठीकु आहे ॿियो फेक अकाउंट बि माना ईअं सम्झो त चीटिंग में थो हलियो वञे छो त डिसऑनेस्टी शामिल आहे डिसऑनेस्टली को माण्हू कंहिंखे फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक चेक हैंड ओवर करे छॾे उन खां पोइ हे बि सेक्शन हुनजे मथां लागू थो थी वञे त उन जेको चेक ॾिनो आहे उहो बि डिसऑनेस्टी सां ॾिनो आहे सो इन्हनि टिन्हिनि सूरत में हिकु न बल्कि टे सेक्शन जे मथां लागू था थियनि चीटिंग जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे फोर्जरी जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे ऐं 489F जो सेक्शन बि लागू थो थी वञे ऐं इन टिन्हिनि में तव्हां हिकिड़ी शइ कॉमन ॾिसंदो दैट इज़ अ डिसऑनेस्टली
1: ओके
0: डिसऑनेस्टी तव्हांखे टिन्हिनि शयुनि में कॉमन नज़र ईंदी जंहिंजो पर्पज़ इहो आहे टू चीट समवन
1: कंहिंखे धोखो डिफरेंस पोइ असां कीअं डिफरेंशिएट कयूं 420 खे ऐं 489F खे
0: 480 असल में आहे त शइ डिफरेंट आहे 420 आहे चीटिंग डिसीव करणु कंहिंखे धोखो ॾियणु हिन में छा आहे त हिन में असां इंटेंशन ॾिसंदा आहियूं चीटिंग में इंटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग खां धोखो ई आहे अ पर्सन हू इंटेंशनली इंड्यूस समवन टू बिलीव दैट दैट थिंग इज़ अ ट्रू उनखे बिलीव थो कराए ऐं उनखां उहा शइ गेन थो करे इनखे असां चवंदा आहियूं की इलीगल लॉस एन इलीगल गेन इलीगल लॉस कंहिंजे लाइ आहे जंहिंजी शइ आहे उनखे त लॉस थी वियो इलीगल गेन कंहिंजे लाइ आहे जंहिंखां हुन उहा शइ इलीगली तरीक़े सां वापसि वञा इलीगल तरीक़े सां एडॉप्ट कई आहे वरिती हुनखां गेन कई उनजे लाइ छा थींदो इलीगल गेन सो चीटिंग में डिसऑनेस्टी शुरू में ई इन्वॉल्व आहे की हुनजो इंटेंशनली जेको इंसेप्शन खां जेको पर्पज़ आहे उहो चीटिंग ई आहे ईअं ई अगरि तव्हां डिसऑनेस्टी में अचो था हिते डिपेंड करे थो त चेक कहिड़ी ट्रांसेक्शन में कहिड़े प्रॉमिस में कहिड़ी सूरत में कहिड़ी ऑब्लीगेशन्स में ॾिनो वियो आहे अगरि शुरू में बदनीयती नाहे पेमेंट्स रवां आहे पेमेंट्स ट्रांसेक्शन फ्रीक्वेंटली थींदी थी अचनि ऐं कुझु फाइनेंशियल इश्यूज़ जे करे उहो कंप्लीट न करे सघियो आहे त असां हुनखे बदनीयती न चवंदासीं छोकी हुनजो हिकिड़ो सॉलिड रीज़न हूंदो अगरि हुन जी शुरू खां ई वठी ट्रांसेक्शन रुकियल आहे ऐं शइ ट्रांसफर थी वई आहे हाणे उहो चए थो उहो तव्हांखे शइ नथो ॾिए ना उहा हुन एम्बिट में ईंदी त हुन डिसऑनेस्टली सां इहा शइ तव्हांखे इशू कई आहे हिनजो मां हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾियां हिकिड़ी तमामु बहितरीन मुंहिंजी फेवरेट हिकिड़ी मूवी आहे टॉम हैंक्स जी ऐं लिनाडो डिकैप्रियो जी हिकिड़ी वॾी बहितरीन मूवी आहे जेकी टोटली इन सिस्टम ते ठहियल आहे हुन मूवी जो नालो आहे कैच मी इफ यू कैन
1: ओके
0: ऑस्कर में वही नॉमिनेटेड थी त उन में सजो जो बैंकिंग सिस्टम आ कि उन में फ्रॉडुलेंटली कोई इंसान फेक चेक के थ्रू बिलीनियर थी सके तो पे छो कि 1960s में अर्ली 70s में एडी माना डिजिटलाइजेशन न हुई तो जेकी जिन्हें थ्रू रोकथाम करे सके तो दैट मैन यूजिंग द फैक्ट चेक एंड फोर्स डॉक्यूमेंट्स टू गेट सो मेनी ट्रांसैक्शन एंड बिकम्स बिलीनियर उन टाइम जमाने जो ही बिकेम बिलीनियर एट दैट टाइम रियल स्टोरी हिकड़ी मूवी आ तो वह सजी रिलेटेड ही इन चेक से कैश मी इफ यू कैन
1: ओके
0: सो अगर कंखे अगर अगर सपोज अगर कई मूवी समझनी है अगर बैग चेक से रिलेटेड कोई इशू समझ
1: या मूवी दिसे
0: तो वो मूवी दिसी सके तो उन में सजो आ ही फोर्जरी थे
1: ता मूवी लवर घणा है मूवीज
0: दिसो ना मूवीज मा भी असन के इंस्पिरेशंस मिलन मूवीज मा भी असन के नॉलेज मिलन दिया सो अगर मूवी सुठी आ ऑस्कर में नॉमिनेटेड आ स्टोरी सुठी आ तो देयर इज अ यू कैन सी इफ यू आर फॉर योर एंटरटेनमेंट
1: सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक्त थियण वारो आहे असां ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं पोइ मोटींदासीं ऐं सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं ऐं सिक्योरिटी चेक खां अलावा वरी असां FIR ते ॻाल्हाईंदासीं छाकाणि त FIR तव्हांखे ख़बर आहे सुथरी पाण वटि थींदी कोन्हे त उन खां पहिरियां ई मामला जेके आहिनि उहे हल करणा पवंदा आहिनि इहो बहितर आहे FIR ते प्रेशर ॾियण जे लाइ खणी जीअं ADR थी सघे सो इन टॉपिक ते वधीक असां ॻाल्हाईंदासीं तव्हां बि पंहिंजो फीडबैक ॾेई सघंदव असांजो नंबर आहे 03000113488 सो लीगल कॉर्नर प्रोग्राम में असां सां गॾु रहिजो पूरे 6 वॻे ताईं

0: हिमाचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अम्मा, ये तो समझ का छा मिलियो?
3: छा मिलियो पुत्रा?

0: महसूस।
1: असाया पानी साफ ना है, तेंजे करी तसा बीमार था चो। असा के पानी ए सफाई बिनिन जो ख्याल रखन गुरजे।
2: केडो सयानो पुट्रा मुंजो
1: बाबा, इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो।
3: हां, साफ पानी महफूज जिंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश।
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम के इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
8: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते

0: नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-8051।

सो वंस अगेन भली कहा लिसनर्स, प्रोग्राम लीगल कॉर्नर अवां ॿुधी रहिया आहियो। बाबर शेख आहे अवां सां गॾु ऐं प्रोग्राम में मूंसां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहिबु। ऐं असांजो अॼु जो टॉपिक आहे 489F सेक्शन PPC डिसऑनर ऑफ चेक एंड इन ते कहिड़ी लीगल जेका हिते कार्रवाई थी सघे थी। शहबाज़ साहिबु, ब्रेक ते वञण खां पहिरां पाण हिते डिस्कस करे रहिया हुआसीं, मूं तव्हांखे चयो त सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। उन ई तरफ़ हलण खां पहिरां अव्हां हिन जो पर्पज़ ॿुधायो त वॉट इज़

0: एक जे बैक साइड डाउन हो त लिखण घुर्जे त सिक्योरिटी बेस ते चेक ॾिनो वियो आहे ऐं उहो डिसऑनर थिए पियो उन ते जेको आहे त कीअं कारवाई थी सघे पई या जंहिं सिक्योरिटी चेक ॾिनो आहे उहो जेको आहे त डिसऑनर थी सघे थो उन ते एफ आई आर बि थी सघे थी या उन ते नथी थी सघे
1: हाणे डिपेंड करे थो त एज़ अ सिक्योरिटी पर्पस ॾिनो वियो आहे चेक छा उहा उहो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन कंप्लीट थी आहे अगरि जेकॾहिं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन कंप्लीट न थी आहे त सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ जेको ॾिनल चेक आहे उहो ऑटोमेटिकली डिसऑनर जी उन में ज़िमेरे में न ईंदो एबिट में न ईंदो अगरि ट्रांसेक्शन थी वई आहे कम्युनिकेशन थी वई आहे प्रोमिस जेके न प्रोमिस्ड जेके कंडीशन्स आहिनि उहे पूरी थी वियूं आहिनि एस पर कॉन्ट्रेक्ट ऐं चेक इशू थियो आहे भले चए उहो सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ छो न इशू थियो हुजे पर उन में डिसऑनेस्टी शामिलु आहे त सभ खां पहिरियों उन में इहो ॾिठो वेंदो त कॉन्ट्रेक्ट एबिलिटी जे मथां आहे इशू कंहिं कयो आहे ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे रिसेप्ट्स ॾिठियूं वेंदियूं अगरि उन में उहे शयूं शामिलु आहिनि त उहा डिसऑनेस्टी आहे अगरि उन में उहे शामिलु न आहिनि त ऑटोमेटिक जेको आहे न उन में इहा डिसऑनेस्टली डिसऑनेस्टी शामिलु नथी थिए चेक बाउंस जी
0: अच्छा इन ते फीडबैक बि आयो आहे उहो मां शामिलु करण खां पहिरियों हिकिड़ो अवां सां पंहिंजो शेयर कंदो सवाल मुंहिंजे ज़हन में अचे पियो त अक्सर हिकु दफ़ा बल्कि कई दफ़ा ईअं थी चुको आहे त हिकिड़ो चेक जेको हूंदो आहे हिकिड़ी पार्टी जो कंहिंखे ॾिनल हूंदो आहे ऐं उहो फॉरवर्ड थींदो रहंदो आहे उहो थर्ड पर्सन ते पहुतो फोर्थ पर्सन ते पहुतो उन जी पेमेंट क्लियर न थी उहो वञी करे चेक जेको आहे त बाउंस कराए पियो ऐं चेक जंहिंजे नाले ते आहे उनजो डिसऑनर थी वियो त छा उन ते एफ आई आर थींदी हू त उन पार्टी खे सुञाणे ई कोन चेक फॉरवर्ड थो थींदो रहे
1: इहो ॾिसो न मां तव्हांखे ॿुधायमि त चेक ॾियण खां अॻु में पहिरीं ॻाल्हि त कॾहिं बि ब्लैंक चेक ॾिजे ई न
0: ठीकु आहे
1: चेक में डेट लिखियलु
0: लाज़मी
1: टाइटल लाज़मी आहे कंहिंजे नाले ते वञे थो बैंक जो नालो वञे थो अगरि मिसाल तव्हां को कॉन्ट्रेक्ट क्रिएट था कयो पिया उन कॉन्ट्रेक्ट में तव्हां लिखत वठो कोई भी कॉन्ट्रेक्ट लिखत खां सवाइ त पूरो ई न आहे अगरि न आहे त उन जा शाहिद ज़रूरु तव्हां वटि हुजनि उन में बैंक जो नालो हुजे डेट ॾिनल हुजे पर्पस ॾिनल हुजे बैंक चेक जो नंबर ॾिनल हुजे उन ऐं कहिड़े पर्पस लाइ इहो चेक ॾिनो थो वए उहो बि उन में अवेलेबल हुजे त उन खां पोइ अगरि कोई उनखे बाउंस कराए थो पियो उन में पैसा सपोज़ कंहिं बि बैंक में वञी करे विड्रॉ कराए थो पियो पे या विड्रॉ कराए थो उन में सफिशियंट अमाउंट आहे या उहो अकाउंट सीज़ आहे या उन में चेक में अल्टरेशन थियल आहे त डेफिनेटली को उन में बैंक जो मेमो लॻंदो हाणे मेमो छा आहे मेमो में सॼी इहो जेको मां तव्हांखे टर्म्स एंड कंडीशन ॿुधायो त उहो मेमो में उहे शयूं लिखी ॾींदा या उन में कढी करे उनखे ॾींदा त बाबा हिन में को अमाउंट ई न आहे हे अकाउंट सीज़ आहे या हिन में इनसफिशियंट अमाउंट आहे या जेकी डेट आहे उहा बि जेके न या हिन में जेकी सिग्नेचर थियल आहे उहा सिग्नेचर हुन सां मैच ई नथी करे पई ड्रावर सां जेको चेक इशू थो करे उहे सॼियूं टर्म्स हिकिड़े रिटन सूरत में अवेलेबल करे उनखे ॾेई पई आहे ऐं हुनजे ख़िलाफ़ एफ आई आर सिग्नेचर सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेके चेक्स हूंदा
0: आहिनि
1: उहे बि डिसऑनेस्टी में शामिल थींदा आहिनि अदरवाइज़ सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेके चेक्स हूंदा आहिनि उहे डिसऑनेस्टी में शामिल न थींदा
0: सो कुझु फीडबैक आहे असां प्रोग्राम में शामिल कंदासीं हीअ वॉइस नोट आहे लेट सी कंहिं मोकिलियो आहे
2: सर अस्सलाम वालेकुम जीअं असीं तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियूं मुंहिंजो नालो अब्दुल गफूर कलादी आहे ऐं मुंहिंजो तालुक कोटकी शहर सां आहे सां हिकिड़ो सुवाल हुयो तव्हां खां छा सिक्योरिटी चेक बाउंस थियण ते सेक्शन 499 एफ बि लागू थी सघे थो
1: ॿुधाए चुको आहे त सेम उहो ई सुवालु आहे सिक्योरिटी अगरि चेक ॾिठो अगरि चेक बाउंस थिए थो पियो या चेक डिसऑनर थिए थो पियो त हुनजी क्रिमिनल लाइबिलिटी कहिड़े पर्पज़ सां ऐं कहिड़ी ट्रांसेक्शन में जेको आहे न ॾिनो वियो आहे इशू कंहिं कयो आहे अगरि उहे शामिलु आहिनि त ठीकु आहे अदरवाइज़ जेको आहे न सिक्योरिटी पर्पज़ सां जेको रिलेटेड चेक आहे उहो जेको आहे न एज़ अ डिसऑनर थो थी सघे
0: ओके डिसऑनेस्टी जो ऑल राइट त उमीद आहे तव्हांखे जवाबु मिली चुको हूंदो सो कॉलर जी तरफ़ हलूं था
1: जी जी
0: लेट सी केयर आहिनि अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर हमेशा जेको आहे
1: इट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट सेक्शन
0: बट ही कॉलर जेके आहिनि मूंसां ईअं कंदा आहिनि हमेशा चवंदा आहिनि थोरो असां प्रोग्राम में मज़ो बि करायूं
1: तव्हांजी क्रीम वॾी मशहूरु आहे
0: सो अच्छा हिकिड़ो वॉइस नोट ॿियो बि आहे प्रोग्राम में मां शामिलु कयां पियो ऐं अचो त ॿुधूं ई छा पिया चवनि
3: वालेकुम मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी कंप्लेन दर्ज करवाने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है
0: ठीक है आपका जवाब देते हैं असा प्रोसीजर की तरफ
1: जी जी प्रोसीजर
0: अच्छा शहबाज साहब इन के अलावा प्रोसीजर की तरफ अचण का पेरा तव समझो पया काई शे रही जी हुई है त असा वो क्लियर करे देन असा प्रोसीजर की तरफ हलो
1: ٹاپک بظاہر ہی اگر پی پی سی میں ڈٹھو وانے ایکڑو سیکشن جی. پر ٹاپک بن شین تے ڈیوائیڈ تھے لائے جی. کرمینل پروسیجر تے ڈیوائیڈ

0: सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
1: तो खोना तो खे मुझे रो पाए तैयार थे जो
2: तू आज भी हसी
1: थोड़ो पाए तो देखार
3: ना माँ माँ थकी पया है
1: न पुटा ये थकना है रत जी कमी है दिसता केडू ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
3: छा कया माँ
1: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद सा ही आई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा तो मेवन जो खलूं खाई विंदा हुआ से उनन सा ही तो खून ठांदो है इन सा न तोखे कुछ थींदो अनाई बार रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही जो ख्याल रखन बेन खां पर वधिक जरूरी है
2: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है
4: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
5: आमीन नाज़रीन मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूं अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
6: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
7: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
8: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
2: उम्मीद के दिए जलते हैं।
10: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
11: इरशाद ऑटोस एंड होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ए बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ए होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स

खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03 20 18 00 003

0: चिकन है तो ताऊने के रोज अंडा खा रहा जो मंझन जी मानी में सूफ़ दी जो तो जियो स्कूल में मुआगुर थकेला ना हो जाए।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिज़ाई जुज़न जी घटताई हुंदी आहे जेका उन्हनि जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणिजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
3: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमदी रही आ पहरो भेरो मां थी रही आ ही ना मुझो भी इयो ही हाल हो
4: खबर ना है तो आही सब कुछ किया क्यों नानी मां ता एतरो थकी थी पवा छा कयो।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 93 07 3592 10 नाजगर लसनगरी कॉलेज हालानी रोड में रापुर
4: राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8373।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302-01800-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन थोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है. मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में. पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है. दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है. पोलियो के 2 कतरे हर

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरा पर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाएं।

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। खुशहाली की नवीद दौर जो आगाज
1: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जी तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात बितरफन लागापन खिते की सूरतहाल से गाल बोल ईरानी घरू वजीर सिकंदर मोमनी पारा खिते में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान की तामीरी किरदार की वाखाण सिकंदर मोमनी अमरीका ईरान विच में जारी चिकताण दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशन के भी सारायो बिन्ही घरू वजीर जो सरकार जारी रखने वाले असम जो वर्चाव तेहरान पहुंचने से सिकंदर मोमनी मोहसिन नकवी जो आदर भाग किया।

0: आपदा हरमुस बाबा ते नवा जाब्ता तैयार करे छड़िया आहिनि जिनखे जल्द लागू कयो वेंदो गडियल
1: कौम
0: ईरान ते फैसलाइतो हमलो पाकिस्तान जे कुछ सुठनि माण्हुनि जी दरख़्वास्त ते रोकियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प अमरीकी टीवी के डिनर इंटरव्यू में चयो आहे त पाकिस्तानी शख्सियतूं ईरान जे वेझो आहिनि उन्हनि चयो असां मुआदो कराए सघूं था अवां रुकजी सघो था रोज़ानी डील करण बाद ॿिए ॾींहं लॻंदो फिलहाल 28 आईनी तरमीम जा आसार नज़र न अची रहिया आहिनि पार्लियामेंट मौजूद आहे इतिहादियुनि सां मुशावत बाद ई कुझु थी सघे थो कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तरड़ चयो आहे त थी सघे थो कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तरड़ चयो आहे त हुकूमत अदलिया ऐं एग्ज़ेक्यूटिव आइन तहत कम करण जूं पाबंद आहिनि असांजी गॾियल हुकूमत आहे इतिहादियुनि जी मुशावरत खां सवाइ आइनी तरमीम कीअं करे सघे थी वज़ीर आज़म असांजो ऐं सदर ॿी वॾी इतिहाद जमात जो आहे तरमीम ते इतिहादियुनि जे सिग्नल बादी मुशावरत खे वधायो वेंदो।

बलियर जी अदालत में पेश कराची सेंट्रल जी अदालत में की के 70 डीएनजे जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो बलियर जी अदालत में नशियात केस में पिंकी की रिमांड वाली दरख्वास्त रद्द कर छी जेल मोकलण जो हुक्म 14 डीन अंदर केस जो चालान पेश कर जी हिदायत पुलिस जो अदालती फैसलो चैलेंज करण जो ऐलान पुलिस पिंकी के बिन्हीं अदालतन में हथकड़ी हणी सख्त सिक्योरिटी में पेश किया।

सिंधुबे पाणी की शदीद खोट बावजूद पंजाब जोरी खोलियल तकरारी केनाल्स में पानी खणत वधाए छदी पंजाब सीजे तोंडसा पंजनद लिंक केनाल्स में 10,000 क्यूसिक पानी खण लगो शदीद पानी खोट के मुंह डींदड़ सिंध में पानी जो बोहरान संगीन थी वो बिना इजाजत पंजाब पारा खोलियल तकरारी लिंक केनाल्स जो कें भी नोटिस वरतो सिंध के आबादगरन में घटती की लहर छायल सूबे में फसलन की पोखी मुतासर थियण जो भी खदशो सिंध हुकूमत जो बारन की बचत लाए लगायल स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने जो ऐलान मार्केट्स मामूल मौजिब खुलियल हूं सीनियर वजीर शर्जी नीलाम अहमद चाहिए सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी अवाम के वो रिलीफ दिनों है दुखियन माशी हालतन में भी अवाम कारोबारी तबके के मुफादन जो तहफुज किया है।

आपरा हरमुस बाबा ते नवा जाब्ता तैयार करे छड़िया आया जिनके जल्द लागू कयो विंदो गडल को ईरान ते फैसला तो हमलो पाकिस्तान के कुछ सुठन मणन जी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीकी टीवी के जनरल इंटरव्यू में चयो आहे ता पाकिस्तानी शख्सियतू ईरान जे वेजो आहेन वरन चयो असा वायदो कराए सकू था अवा रुकजी सको था रोजानी डील करण बाद बे दिए लगन फिलहाल 28 आईनी तरमीम जासार नजर न अची रहा है पार्लियामेंट मौजूद है इतिहादियन से मुशावत थी सके तो कानून वाले फाकी वजीर

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर

0: ఐరన్ స్టోర్ హాల్ ఆని హోల్సేల్ డిపో అ నేమ్ టు బి ట్రస్టెడ్
1: సరియా గార్డర్ టియర్ ఎంగల్ చేనల్ పట్టి లోహి దర్వాజా సిల్వర్ జా చౌక్ సిమెంట్ రేతి క్రేష్ ఐ రంగ్ వగేరా బజార్ కా బారియా దస్తయాబ్ ఆని
0: హాని యచు మెహరాన్ ఐరన్ స్టోర్ నజ్ బలోచ్ పెట్రోల్ పంప్ నేషనల్ హైవే హాల్ ఆని
1: రాబ్తే లై ప్రొప్రైటర్ గులాం నబీ ముగల్ 03003204372 ఐ 02424601 00
2: इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अदालती पेशे ते दाहूं पुलिस ते तशद्दुद करण ऐं ज़बरदस्ती बयान ॾियण जो इल्ज़ाम समूरी कार्रवाई जो ज़िम्मेवार अॻोणो मुड़ुसु करार अनमोल उर्फ पिनकी चयो त बेगुनाह आहियां कुझु बि नाहे कयो सभु कुझु अॻोणो मुड़ुसु कराए रहियो आहे 22 ॾींहं पहिरीं लाहौर मां खंबियो वियो 15 ॾींहं रखण बाद 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो केस बि कूड़ा आहिनि AIG कराची जी सदारत हेठि पिनकी खां थींदड़ जांच बाबति इजलास अहम फैसला कया विया।

सिंधुबेन पाणी की शदीद खोट बावजूद पंजाब जोरी खोलियल तकरारी केनाल्स में पानी खणत वधाए छी पंजाब सीजे तोनसा पंजनद लिंक केनाल्स में 10,000 क्यूसिक पानी खण लगो शदीद पानी खोट के मुंह डींदड़ सिंध में पानी जो बोहरान संगीन थी वो बिना इजाजत पंजाब पारा खोलियल तकरारी लिंक केनाल्स जो कें भी नोटिस न वरतो सिंध के आबादगर में घटती की लहर छायल सूबे में फसल की पोखी मुतासर थियण जो भी खदशो सिंध हुकूमत जो बारन की बचत लाए लगायल स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने ऐलान मार्केट्स मामूल मौजिब खुलियल हूं सीनियर वजीर शर्जी नीलाम अहमद चाहिए सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी अवाम के वो रिव्यू दिनों है दुखियन माशी हालत में भी अवाम कारोबारी तबके के मुफादन को तहफुज किया है।

0: 12 خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی تعمیری کردار
1: سب چٹ لگو پہ.

0: वारे अज़म जो वर जाओ तेहरान पहुंचण ते सिकंदर मोमनी मोहसन नकवी जो आधार भाव कयो।
1: Very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about five times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because
2: the president of China agrees with you on that.
1: He agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
3: ईरान ते फैसला तो हमलों पाकिस्तान के कुछ सुठन माण्हुनि जी दरख़्वास्त ते रोकियो। अमरीकी हज़रत डोनाल्ड ट्रंप अपने की टीवी के ॾिनल इंटरव्यू में चयो आहे त पाकिस्तानी शख्सियतूं ईरान जे वेझो आहिनि। हुननि चयो असां मुआहिदो कराए सघूं था, अवां रुकी सघो था। रोज़ानी टीवी ॾिसण बाद ॿिए ॾींहुं लॻंदो आहे त ईरान ॻाल्हियूं ई नाहिनि कयूं। हुननि सां कुझु मसइलो आहे हू चरिया आहिनि। चीनी सदर बि ईरान वटि एटमी हथियार न रखण वारो मौक़िफ़ रखे थो।
0: ईरान जो विच ओभर जे कुझु मुल्कनि पंहिंजी सरज़मीन ईरान ऐं फलस्तीन जे दुश्मननि हवाले करण जो इल्ज़ाम। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई जे सलाहकार मोहम्मद मुखबर चयो आहे त ईरान उन्हनि खे दोस्त सम्झो, पर विच ओभर जे कुझु मुल्कनि पंहिंजी सरज़मीन ईरान ऐं फलस्तीन जे दुश्मननि हवाले कई। ईरान रदि अमल में सब्र जो मुज़ाहिरो कयो। सब्र सदाई जारी नथो रही सघे। हालतूं बरक़रार रहियूं त ईरान जो रदि अमल वधीक सख़्तु हूंदो।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हा